हमको इस जिंदगी ने मारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। आदमी कुछ भी कर नहीं सकता, आदमी कुछ भी कर नहीं सकता, वक्त ऐसा गुजर नहीं सकता, वक्त ऐसा मगर

0: वो कोई कंजरी है अथवा रहनी
1: बहुत खूब, बहुत
0: है। अगला पैरा जी, क्या है सर सुनो।
1: जी जी
0: रोग जड़ों ना कटे ओ वैद्य का दा,
1: आहा।
0: रोग जड़ों

दिल वाले के दिल लुट जाते, बक्से घूंघट उठा के रखते हैं, बस दिल से मोहब्बत करते हैं।

तुम परियों की शहजादी हो, अरसों से आई हूर कहूं। तुम परियों की शहजादी हो, अरशों से आई हूर कहूं।

मैं फल से उठ कर मत जाना, ये महफिल है दिल वालों की। महफिल से उठ कर मत जाना, ये महफिल है दिल वालों की। हम तुमसे गुजारिश करते हैं, पड़ जाए ना रात सवालों

0: गिरते हैं शाह सवारी मैदाने जंग में,
1: बिल्कुल
0: वो तुम क्या
1: बिल्कुल
0: गिरेगे। ऐसा जरूरी है कि बंदा घट्टो घट तुरे तो सही, वो कोई हिम्मत ना रखे कि कल्पना चावला ने उन्हें लिखा कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी कंध ते लिख के ला लिया, तो वाकई उन्हें ड्रीम फॉलो किया ते
1: बिल्कुल
0: स्टार की यात्रा की। तो ये जरूरी है जिहड़ा कोचिंग, एक आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी कोचिंग दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे नूं मैन टू मैन वो वेरी करदी है, किसे नूं लोड़ है किसे नूं नहीं लोड़ है। पर फिर भी जिहड़े कोचिंग सेंटर्स है, ये तो मशरूमिंग इन्हां दी इन्नी ज़्यादा हो रही है, इन्हां दी कोई सिग्निफिकेंस आपां नूं की लगदी है जिहड़े।
1: कोचिंग एक भेड़चाल बन चुकी है अज के
0: जी
1: जमाने दे
0: जी
1: विच।
0: जी
1: कोचिंग मैं कहना कई कई बच्चे इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिना कोचिंग के असं पढ़ ही नहीं सकते। एंड दे आर डूइंग वंडर्स। कोटा है,
0: हाँ जी हाँ
1: कोटा
0: जी हाँ
1: दिल्ली
0: जी,
1: एक हब
0: वो
1: बन
0: तो
1: गया
0: पूरा
1: है,
0: कोचिंग
1: उसे हब बन गया है, तो उसे जिहड़े बच्चे निकल रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुली निकल रहे हैं। बट
0: जंगल
1: तुसी
0: बन
1: परसेंटेज देखो,
0: गया।
1: उत्थे जो लख बच्चे जा रहे हैं तो 100 बच्चा निकलता है।
0: जी, ओ जी बिल्कुल
1: ठीक है, ये चीज़ नू आपां 100 की अचीवमेंट नू देखते हैं कि 100 बच्चा कोटा ने निकालता या दिल्ली ने
0: निकालता। हाँ
1: निकालता या कोई पर्टिकुलर शहर है इस तरह का जिहड़ा 100 बच्चे हर साल निकाल रहा है। बट उत्थे परसेंटेज भी देखी जाए कि कहड़े बच्चे नहीं निकालते थे, वो अगे की करते पए ने।
0: बिल्कुल
1: मेरा
0: सही,
1: कंसर्न नहीं है कि वो बच्चे फेल हो रहे हैं, मेरा कंसर्न ये है कि फेल होने तो बाद उन्हां दी उत्थे कोई काउंसलिंग उत्थे हो रही है
0: हाँ जी हाँ जी
1: कि वो बच्चे जिहड़े कि किसी कारणवश नहीं निकलते पे,
0: नहीं
1: अपने
0: निकल,
1: करियर च नहीं निकलते पे,
0: हाँ जी हाँ
1: कि
0: जी
1: वो फेल होने तो बाद अगे होर मेहनत करते ने, अगे होर ट्राई करते ने, अगे कितने कोई डाइवर्स फील्ड के चले जाते हैं,
0: जी
1: डिस्पर्स हो
0: जी
1: जाते हैं, कि
0: हाँ
1: वो उत्थे स्टक रह जाते हैं अपने करियर के अपने लाइफ के पॉइंट पे कि जी मैं तो हूँ निकलना ही है 6 7 साल 8 साल अपने भावे मैं खराब कर लवा।
0: जी,
1: सो इस तरह के जिहड़े कोचिंग सेंटर ने उदों पेरेंट्स का अगेन फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप का
0: प्रेशर
1: इवन कोचिंग सेंटर्स का रोल बन जाता है कि बच्चों को ढंग ना गाइड करन। 3 4 साल हो गए नहीं निकलता पाया, एंड अगे लाइफ से या तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इन्ना टाइम तू ट्राई कर ले निकल दो,
0: हाँ
1: उस बाद अपना प्लान बी ते आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज से और
0: जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी है,
0: एक बैकअप
1: एक
0: प्लान
1: बैकअप
0: जरूरी
1: जिवें
0: आनी
1: तुहाडे स्टूडियो से बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज़ का होंदा
0: बैकअप
1: हैगा,
0: प्लान
1: और बैकअप प्लान लाइफ से होना भी बहुत जरूरी है कि कितने कोई
0: बिल्कुल
1: स्टक करके तो तुसी प्लान बी ते आ जाओ। तो मेरा कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसी जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज 99% तुसी सक्सेसफुल नहीं रहोगे, वन
0: हाँ जी
1: परसेंट ही तुहाडा सक्सेस चांसेस है।
0: जी
1: उस तो बाद अपना जिहड़ा प्लान बी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, या तो पढ़ाई के नाल नाल तुसी कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसी अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। अजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
0: सारे आ
1: जिहड़े
0: रहे हैं,
1: प्रोग्राम बनते पए
0: बड़े
1: ने,
0: अच्छे
1: तुसी
0: प्रोग्राम हैं।
1: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे अजकल साधन बन गए ने, तुसी नाल
0: जी
1: नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम नू अचीव करन दा भी जिहड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
0: बिल्कुल
1: बट
0: बिल्कुल,
1: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसी ना उठे, फिर उत्थे तुहाडा करियर जिहड़ा है खत्म
0: क्योंकि
1: है।
0: जिहड़ा फेल हो के फेल पास होना तो जिंदगी का एक वो
1: बिल्कुल
0: यही जिंदगी है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: इतने प्रेशर इन्ना होंगे उत्थे, जो आप कोटे की गल करिए जां इवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरां दे विच भी कोचिंग सेंटर चलते आ, जदों पेरेंट्स उत्थे भेजदे आ बच्चे नूं, वो इनू एक ग्रंटड मान लेंदे आ कि हुण उत्थे चल गया, दैट इज बस ये हो गया बन गया है जो आप बनाउणा चाहुंदे हो, उस उत्तों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितने ज़्यादा वध जाता है।
1: बिल्कुल
0: ते आपां ये भी देखते हैं बड़ी दुखदाई खबरां आउंदियां कि उत्थे आत्महत्या कर ली किसी बच्चे ने,
1: बिल्कुल
0: कुछ घट गया वध गया नंबर, कुछ ऐसा हो गया है, ये एक माड़ा असर जिहड़ा आपां समझते हैं कि पैंदा है बच्चों का। वो प्रेशर है जिहड़ा है उन्हों घट, मैनेजमेंट है जिहड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये बच्चा किवें उन्हों कर सकता है उत्थे जिहड़ा बंदा उत्थे है।
1: एक हैरानी वाली गल जिहड़ी सामने आ रही है, स्ट्रेस जिहड़ी मैनेजमेंट है फेलियर ते नहीं है, सक्सेस ते भी अजकल स्ट्रेस हो रहा है।
0: अच्छा
1: बच्चे
0: जी,
1: जिहड़े फेल मतलब फेल मैं कहूंगा नाकामयाब हो जाते हैं किसी कंपिटेटिव एग्जाम च, उन्हां दी खबरां आंदियां
0: हाँ जी
1: ने
0: हाँ जी
1: कोई किसी फील्ड च चला जाता, मान लो डॉक्टरी कर लैंदा है या कितने
0: जी
1: इंजीनियरिंग कर लैंदा है, उत्थे कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, या फिर उत्थे तुहानू प्रॉपर तुसी अपने करियर च आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुसी पढ़ोगे अजकल कॉलेजेस दे विच भी सुसाइड दे जिहड़े केसेस ने काफ़ी
0: आ
1: जिहड़े
0: रहे
1: है बाहर सुनन नू आ रहे
0: आ
1: ने।
0: रहे, हाँ जी हाँ जी
1: स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुसी कोई टेक्निक तुसी उदी स्टडी कर लो तो उस बाद स्ट्रेस नू जिहड़ा मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस तुसी अपने ही तुहानू ही काबू करना बेसिकली,
0: सेल्फ काउंसलिंग ही
1: सेल्फ
0: करनी है। हाँ
1: काउंसलिंग, तुसी कुछ अपने आप नू इस तरह किसी चीज़ से रुझा लो, जिवें आप कहते हैं खेड खेडनी बहुत जरूरी होंगी है,
0: जी हाँ जी
1: खेड खेडना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ताड़ा
0: बिल्कुल,
1: कोई लाइफ से इंटरेस्ट है, तुहानू डांसिंग का शौक है, तुहानू सिंगिंग का शौक है,
0: वो भी

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास

0: रात गुजार रहे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दीप कौर जी, सवाल जी तो बाद हुण हुशियारपुर जिले दे शायर गुरप्रीत सफरी जी परदेसी वीरां दे नां अपनी एक कविता लेके हाजिर हो रहे ने। आस करदे आं कि तुसी उन्हां दी इस कविता नूं जिहड़ा आ पसंद करोगे। गुरप्रीत सफरी जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
2: सत श्री अकाल दोस्तो, एक बहुत ही खूबसूरत रचना जिसका नाम है परदेसी वीरां दे नाम पेश करांगा। उम्मीद है आप इस रचना नूं भरपूर हुंगारा देंगे। मेरे चेहरे दे नक्श तो वाकिफ, मेरे चेहरे दे नक्श तो वाकिफ, ये लोग मैनू किंज पहचानणगे। जे हाल दिलां दा कह बैठा तो मेरे दुखां दा सबब किंज जानणगे। हुंदा सी जदों नगरी दे विच, हुंदा सी जदों नगरी दे विच, बैठ जाना सा पल दो पल, बुढ़ी मां दी गोद विचाले जां फिर यारां दियां मस्तानगियां विच।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

0: है, बट एक गल मैं कहनी चाहूँगा कि चिंता के नाल नाल कुछ एफर्ट्स भी पेरेंट्स वालों अपने बच्चे दे लाने बहुत जरूरी ने, खास करके अजकल के समय के विच। जे आप सिर्फ चिंता करते रहेंगे कि साडा बच्चा कुछ कर नहीं रहा, साडा बच्चा स्कूल च पढ़ता नहीं है, साडे बच्चे नूं टीचर्स ध्यान नहीं देंगे, स्कूल च फैसिलिटीज नहीं है, आके दोस्तों नाल खेलता रहिंदा है, पढ़ाई विच बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हैगा, पर आप जिहड़े फादर ने और रात 9 बजे आ रहे हैं काम तो, जेडी मदर है वो पार्टी से जा रहे ने, अपने गुआंढियां नाल गल्लां कर रहे ने, रात नूं टीवी वेख रहे ने, वो जे इस तरह की करांगे कि उहदा कोई फायदा नहीं है।
1: बिल्कुल
0: उन्हां नूं जे चिंता करनी है तो अपने बच्चों के टाइम देना भी उन्ना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ता ही उस तो बाद जो बच्चे नहीं सुनते फिर उन्होंने चिंता बिल्कुल जेन्युइन हैगी। कि बच्चा एक जो छोटा बच्चा होंगे कच्ची मिट्टी होंगे, जिम्मे आप
1: बिल्कुल
0: घड़ा बनाते घुमार बना,
1: हाँ
0: उन्होंने
1: जी
0: जो पेरेंट्स है घुमार उन्होंने अपना एफर्ट देना, जिस तरह वो शेप कर दूगा बचपन के उसी तरह वो वधिया घड़ा जरा बाद च
1: बिल्कुल
0: बनूगा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: इस
1: कह
0: करके पेरेंट्स नू माता नू पिता नू अपना स्कूल तो बाद जो टाइम है और जिन्ना ज़्यादा डेडिकेट करेंगे उन्ना उन्ना बच्चा अगे बढ़ के वधिया जरा एक सिटीजन बन सकता है।
1: जी। बस वो जिहड़ा कुछ है उन्हों वो पहला अपने माइंड च भी उन्होंने क्लियर करना पैना है कि बनेगी। लेकिन कई बार आपां ये देखते हैं जी कि जिहड़े पेरेंट्स आ मान लो वो जिंदगी च कुछ बनना चाहते सी, कुछ वही सेम कुछ कि वो डॉक्टर बनना चाहते सी मान लो, तो वो अपने बच्चों को भी सोचते हैं कि इन्हों जरूर आप बना देंगे, आप बने नहीं तो बच्चे का रुझान नहीं, वो देखते कि बच्चा की बनना चाहता है कि नहीं, तो उस हालात जिहड़े है किस तरह के बन जाते हैं जो बच्चे को इदा आपां कहंदे हैं।
0: बच्चों के बीच आप फिल्मों च भी दिखाते हैं कि जो पैदा होंगे उदों ही एक टैग ला दिता जाता है कि इनू वड्डा हो गया मैं डॉक्टर बनाऊंगा। मे
1: हाँ
0: भी
1: जी हाँ
0: जिम्मे
1: जी
0: गल है कि उन्हें पेरेंट्स ने आप सोचा होना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता सी या इंजीनियर बनना चाहता सी पर मैं बन नहीं सकया, वो अपनी
1: बिल्कुल
0: आसा जी बच्चों से पैदा होंगे ही थोप देते हैं कि इनू का वड्डा हो गया मैं डॉक्टर
1: कि
0: बनाना
1: कोई
0: है
1: हाँ जी हाँ
0: या
1: जी
0: इंजीनियर बनाना है। केजी तो लैके पहली तो लैके 10वीं तक वो उही टैग लैके कैरी करता बच्चा कि भाई मैं तो वे होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना ये पैदा होंगे ही या पहली क्लास से डिसाइड नहीं होता, कुछ इंटरेस्ट
1: जी
0: जड़े है बच्चे के डिवेलप होंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विच, जो
1: हाँ
0: मैथ
1: जी
0: चंगा है तो 8वीं 9वीं 10वीं जो बंदा डिसाइड कर सकता है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला जावा, जो वो सोशल स्टडीज़ या इस तरह आर्ट्स के सब्जेक्ट उन्होंने चंगे लगते हैं तो वो आर्ट्स में जा सकता है, जो उन्होंने
1: जी
0: मेडिकल बायो के सब्जेक्ट चंगे लगते हैं तो वो मेडिकल लाइन चूज कर सकता है। बट
1: बिल्कुल
0: वो स्टेज आती है बच्चे के करियर से 8th 9th 10th तक। अब पेरेंट्स का जो फर्ज है वो ये है कि 8वीं तक बच्चे नू उस 8वीं तक लेके जाने लिए ग्रूम करे। ग्रूम किस तरह कर सकते हैं कि
1: हाँ जी
0: बच्चों के इंटरेस्ट नू समझने की कोशिश करे, उन्होंने टाइम दे, वो दोस्ती किस किड़े किड़े बच्चों नाल उसकी दोस्ती हो रही है, वो की कर रहा है, किड़ी खेडां च उसका इंटरेस्ट है, स्कूल तो आउन तो बाद वो की करता है,
1: मॉनिटरिंग
0: वो
1: तो हो
0: टीचर्स
1: जी
0: किस तरह मॉनिटरिंग जो करेंगे 8वीं तक उन्होंने प्रिपेयर करेंगे, एक लॉन्च पैड देंगे अठवीं
1: जी
0: 9वीं तक, उस
1: बिल्कुल
0: तो बाद जो बच्चा अपने करियर के लिए टेक ऑफ कर सकता है। तो इस करके पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपनी इच्छावां उन्होंने तो पूरी कराइए, पर ये नहीं कि जी मैं तो अब मेरा बच्चा होया तो मैं उन्होंने अपनी सारी इच्छावें इस तो पूरी करानी है, इट विल टेक
1: जी
0: टाइम, वो तुसी आफ्टर 10 और 12 ईयर्स उससे कर सकते
1: मतलब लाल किला सीधा नहीं बनना, पहला बुनियादा पुटनिया
0: हो
1: पैनिया
0: बिल्कुल
1: नीह रखनिया पैनगियां, फिर ही ताजमहल या कुतुब मीनार कुछ बनगी। तो
0: बिल्कुल
1: बाकी एक जो चलो पेरेंट्स ने उन्होंने 9वीं 10वीं 9वीं 8वीं तक कोई भार नहीं पाया कि ठीक है बच्चा जो करता करन दो, एक गीत गाँव दो, नचता है कुछ करता है, साइंस पढ़ता है क्या पढ़ता है कुछ नहीं, लेकिन फिर वो अगे बच्चा पहुंच जाता है 9वीं 10वीं के बच्चे, वो एक बड़ा ही क्रिटिकल जहाँ पीरियड बच्चे लिए भी होंगे कि उदों विषयों की चोन बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट शो करता है कि यस मैं मैथ विच बहुत गुड हाँ, जब मैनू कोई लिटरेचर अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, उदों वो ट्रेट्स कुछ कुछ उभरने शुरू हो जाते हैं
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: अगे जाके की करने वाला है। उस वे बच्चा जो है टीचर है बच्चा है अध्यापक वो एक तरह चौरस्ते च खड़े होंगे कि हूँ आपने जे हूँ नहीं सोचा फिर कुछ नहीं हो सकता, ये
0: बिल्कुल
1: पूरी जिंदगी का सवाल ही है, ये दो विशेष तौर पर क्लासा
0: बिल्कुल
1: 9वीं 10वीं च इतने बच्चे की ध्यान रखना चाहिए बच्चे दे लेवल दे अपन जी सोचिए।
0: बच्चे नू इस स्टेज के उत्ते सपोर्ट ते मोटिवेशन दी बहुत ज़्यादा जरूरत होंगी हैगी। कुछ गल्लां इस तरह दी होंगी है, वो चेंजेस ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ
1: ਜੀ
0: ਵੀ ਉਹ
1: ਹਾਂ
0: ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख लै माए, हुन साम के रख लै माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तो

जिंद वादियां चे डुब गई जे संतरी जांद है ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांद है। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे की करां जे आपे चे।

ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।